आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।

0: YouTube Music Premium के साथ अपने पसंदीदा गाने सुने बगैर इश्तेहारात के। ऑफलाइन या चलते फिरते सुनने के लिए मौसीकी और पॉडकास्ट डाउनलोड करें। अपनी पसंद से बनाई।
1: You are listening Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεννήσει από τα σαφάρ και τα σαφάρ που χαστηρί.
1: Για να τη σε τα ρεκανά από σαφάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χαστηρί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με τη μόχο κόρτα national ο multi national καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεκανά τα γιλε βε χαρβάτε μουτάχα κούρσε κραλέ. Ποτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβολα να χωσούλ δι.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर एक शोले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी से खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर निस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دام رکشلای ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چرتا ملاویزی
1: تاره خانا داو توتا پا بانی گلشه جانزه بگاله شای مارکید دی اسما مین دیستیبیوتر حافظ زهیر سیب سارا ملاویزی

0: तड़ाए माजे में जी दार तो ये पता शापर सी देता शाय हो खस्ती थी
1: जानाती से तारखा ना पर शापर के हम एश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: एश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाए में जी मोहो कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपनेवल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखा ना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श एक डाले होचे कला ना में कुर्ता एश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी उस्टूल कुर वाला ना फाशूल दी
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब उदार तो ये या चेप एश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना एश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دم رکشلای ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چرتا ملویزی
1: تاره خانا داو توتا پوانی گلشه جانزه بگاله شه مارکید دی اسما مین دیستیبیوتر حافظ زهیر سب سر ملویزی

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।

0: तड़ाए माजे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय उपस्थित थी
1: जानते से तार खाना पर शापर के हम इश्मा वाशिंग पाउडर उपस्थित थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाए में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तार खाना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर उड़ल से रिकड़े दी और स्टूल कुर वाला नकवाशोल दी
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब उदार तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाव मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाव तो था पवा निकल से जानते भी गले से मार्केट दे इसमा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सारा मिला भी जी।

0: ਪਵੇ।
1: ਨੈਕਸਟ ਮੇਕ ਯੂ ਟੂ ਸ਼ਿਖਾਨ ਸਵੀਟ ਬੈਜਾਨੀ ਫਾਰ ਯੂ। न किसी की आस थी न किसी की तलाश है, न किसी की आस थी न किसी की तलाश है।

अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा स्वीट भाई जानी मेरे पास है जैसा न किसी की आस्ती न किसी की तलाश है जो हास है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी स्वीट भाई जानी मेरे पास है क्यूट रोशी खानी थैंक यू सो वेरी मच सर।

नेक्स्ट वही छे मी क्यूट रोशी खानी स्वीट भाई जाने यू आर माय बेस्ट हार जे यू आर माय फेवरेट हार जे यू आर माय स्वीट भाई जाने थैंक यू सो वेरी मच भंडल आप मच

अच्छा नुक्तावरों ने हमको समझाया हास बनो और आम रहो महफिल महफिल सोहबत रखो दुनिया में गुमनाम रहो। ओके जी थैंक यू सो वेरी मच भाई जी मेक यू शानी स्वीट भाई जानी बस ओके गुड लक एंड गुड लाइफ एंड गुड नाइट। ओके जी सेम फॉर यू थैंक यू सो वेरी मच गुड नाइट हो अगेन एक वजीर भाई का नाच है मोर दर नजार राज भाई साजिबा शेरी के थैंक यू सो वेरी मच फशोला रहता हूँ।